0: चेचेड़ कतेरा कतेरा ये बेसी दाना वाला नहीं रहेगा, दाना वाला नहीं चाहिए, क्या बीस रुपये खाली बीस रुपये बोलो। माई डैड when he's only 14 he came to India. Hey, can I aapka kya naam hua? Hello. Because of the World War II, there's no way to go, and they recovered that Kolkata, India is a very good place and it's easy to earn living. So he came to Calcutta and from then he stay in India. He never wants to go back to China again.
1: आप फिर आइएगा, हम जानता है आपको एक धमाल करा।
0: कितना हुआ, कितना पीस हुआ?
1: 5 पीस अभी हुआ। हाँ
0: बस
1: 20 किलो आप लेते हैं?
0: बस बस भिंडी अच्छा नहीं लग रहा, आधा किलो भिंडी दे। खाली 20 रुपये।

Good. If you call them to join, come and join line dancing, no one wants to come. You tell them, come and join Chinese Kung Fu. So many people want to learn. So that's how I attract people. I don't just teach line dancing, I want to teach some Kung Fu as well. Down gaya, Krishna, kya hua aaj? अच्छा गौरव कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है हम लोग एक इनोवा जाएगा तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है लाइक ये वाला ऐसा वाला हम लोग का पूरा टीम आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को आपका साथ गाड़ी में बैठ जाएगा टिकटी बाजार टिकटी बाजार टुंगान चर्च का सामने

0: ये चेंडा कतेरा कतेरा ये बेसी दाना वाला नहीं देगा, दाना वाला नहीं चाहिए। क्या बिस्बी खाली बिस्बी बोलो। माय डैड व्हेन ही इज ओनली 14 ही केम टू इंडिया। Hey, can I? आपका क्या नाम हुआ? Hello. Because of the World War II, there's no way to go, and they recovered that Kolkata, India, is a very good place, and it's easy to earn living. So he came to Calcutta, and from then he stay in India. He never wants to go back to China again.
1: आप फिर आइए, हम जानता हैं आपको एक धमाल करा।
0: क्या नाम हुआ? क्या नाम पीसा हुआ?
1: आठ पीसा भी हुआ। हाँ हुआ।
0: बस।
1: 20 किलो आप लेते?
0: बस बस। भिंडी अच्छा नहीं लग रहा, आधा किलो भिंडी दे। Hey, Maya, okay. Yeah. Donna, Donna. You know what? Khali bisu bhi.

अच्छा गौरव कल मंडे का 4 बजे हम लोग का ट्रक को अरेंज करना है. हम लोग एक इनोवा जाएगा तो एक छोटा हाथी से थोड़ा बड़ा वाला है लाइक ये वाला सब वाला. हम लोग का पूरा टीम आधा टीम वहाँ में जाएगा और किसी को आपका गाड़ी में बैठ जाएगा. टिकटी बाजार टिकटी बाजार टूंगान चर्च का सामने.